म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलौती र पुत्र गुमला नाली कहाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजु भाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

कृष्णा कृष्णा बंदा बंदा मरे ना पाउंज ओ कृष्णा कृष्णा बंदा बंदा मरे ना पाउंज ओ मरे ना पाउंज ओ मैले मरे ना पाउंज ओ कृष्णा कृष्णा बंदा बंदा मरे ना पाउंज।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: स्थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांत बाई जी लगाए थी महात्मा जी को जय। हरिओम चक्षुम